बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: बेस्ट प्रोडक्ट कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: मम्मी मम्मी दांत दुखियो।
1: मम्मी मेरे दांत बंगो आयो। साथी ले सोते ही जिसके जंचन। स्कूल में जाना लाज लगने वाली सोचियो।
2: हेलो श्रीमान जी, मेरे पनी दांत गिजा को समस्या समाधान करने पायो क्या?
3: तिमीलाई खास है ना अंतर्राष्ट्रीय जर्मन प्रविधि को ओपीजी एक्सरे सहित सस्तो र सुलभ उपचार करने बीआर डेंटल में गए भैयालियो नि लौ हिड़।
1: राप्ती अंचल को सुविधा संपन्न अत्याधुनिक प्रविधि को विकास सँगै सुरु गरिएको बीआर डेंटल होराईमा
3: दांत गिजा मुख तथा अनुहार का हाडहरू भाँचिएमा वा उपचार गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नुहोला।
4: लामो समय फिलिपिन्स बंगलादेश का विभिन्न अस्पताल में अनुभव प्राप्त वरिष्ठ डेंटल कंसल्टेंट अर्थोडोन्टिक डाक्टर विपिन भूषाल सीएमएस चितवन बाट डेंटल सर्जन डाक्टर रचना घिमिरे डेंटल सर्जन डाक्टर आस्था खत्री द्वारा बिरामी को दैनिक रूप में जांच तथा उपचार भइरहेको छ।
5: सावधान उस्ता उस्तै नामबाट नजुकिनु होला है। बीआर डेंटल में दाँत मिलाउनका लागि सम्झनुहोस् डाक्टर विपिन भूषाल।
6: संपर्क बीआर डेंटल न्यू रोड साझेदारी टोल यामाहा शोरूम नजिकै।
3: संपर्क फोन नंबर 0825902022।
1: टू रोड सुटी पुकार खोइनी जस्ता सुटीजन्य पदार्थ सेवन नगरौ क्यान्सर बाट बचौ। रेडियो मध्यपश्चिम र बीआर डेंटल को सहकार्यमा जारी सन्देश।
7: शिशु क्लिनिक घोराहीमा निसन्तानपन विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
8: विगत लामो समयदेखि निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या भएका दम्पतिहरूको उपचार गरी सन्तान प्राप्तिमा सफलता प्राप्त गर्न सफल दाङको घोराहीमा अवस्थित शिशु फर्टिलिटी क्लिनिक एन्ड आईभीएफ सेन्टरमा प्रख्यात निसन्तानपन विशेषज्ञ डाक्टर श्वेता थापा यही असोज 4 गते आउनुहुन्छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। चाडपर्वको समयमा क्याराको मूल्य मजा पाइबेर दाङको क्यारा उत्पादक किसान उत्साहित बनलबाट गत वर्ष क्यारासे मूल्य निपाइबेर निराश बन्ल किसान यी वर्षभरि उत्साहित बन्ल खुइट राप्ती गाउँपालिका साथी सन्निया निवासी रणप्रसाद सुवेदीसे कृष्ण जन्माष्टमीसे हालसम्म 9 लाख रूपियाँको क्यारा बिक्री गरेर लोक बटुवा राख्ल। श्री सन्निया लगायत देउखरी क्षेत्रमा 35 बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती गर्ती इलक सुवेदीसे 1 महिनामा 9 लाख रूपियाँ बराबरको क्यारा बेचलक बटुवा राख्ल। जन्माष्टमीसे ब्याला केल 5 लाख रूपियाँको क्यारा बेचलक सुवेदीसे। 30 अवसरमा हालसम्म करिब 4 लाख रूपियाँ बराबरको मालभोक क्यारा बेचलक बटुवा राख्ल। वहाँका अनुसार गैलक फागुनमा अहिलेको हावाहुरीको कारण 12 हजार बुवाट ढलबेर उत्पादनमा कमी आरहल। राप्ती क्यारा प्रवर्धन समूहका अध्यक्ष समेत रलक सुवेदीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यी वर्ष क्यारा उत्पादक किसानसे क्याराका मजा मूल्य पहिलो पाए राख्ल। बाह्रसे क्यारा आयातमा कमी हुबेर जिल्लामा उत्पादन बढ़ल हुइलक क्यारासे मूल्य पहिलक किसान सुवेदी बटुवा राख्ल। उहाँका अनुसार चाडपर्वको समयमा बाह्रसे क्यारा भित्र निपाइबेर स्थानीय क्यारा उत्पादक किसानसे मजा मूल्य पहिलो फुइट। श्री सन्याको जो औरो किसान विद्या बहादुर चौधरीसे यी वर्ष करिब 3 लाख रूपियाँ मूल्यको क्यारा बेचलक बटुवा राख्ल। बारी मसेजो यी वर्ष दर्शनको 100 रूपियाँको दर्श क्यारा बिक्री हुइतिरल कति चौधरीसे गत वर्ष 70 रूपियाँमा देहेबेर्फे निविक्ना समस्या रलक बटुवा राख्ल। मन्जुला बहुद्देश्य कृषि फार्म दर्ता गइकन 7 वर्षसे व्यावसायिक खेती क्यारा खेतीमा लगलक चौधरीसे फार्मसे उत्पादित क्यारा लमही भालुबाङ श्री लगायत बजारसे किसान आकन लैजना करलक बटुवा राख्ल। उहाँसे 7 बिघा जग्गामा व्यावसायिक क्यारा खेती गरिरहल। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको अनुसार जिल्लामा 447 हेक्टर क्षेत्रफलमा मालभोक हरिसाल लगायत जातका क्यारा खेती हुइना करलबा ज्याकरसे वार्षिक 9973 मेट्रिक टन क्यारा उत्पादन हुइना करलबा।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: वरिष्ठ पाइल्स फिसर तथा फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह अब दाङ गुराईको दिव्य फार्मेसीमा।
2: आधुनिक लेजर प्रविधिद्वारा उपचार र बिना चिटफार उपचार,
3: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू, पाइल्स फिसर फिस्टुला र पाइलोनाइडल साइनसको आधुनिक लेजर प्रविधिबाट बिना चिटफार उपचार,
4: बिना टाका प्रभावकारी उपचार,
2: दिशा गर्दा दुख्ने, रगत आउने, मासु पलाएको, घाउ भएको, पिप बग्ने, चिलाउने, कब्जियत एवं सम्पूर्ण रोगको सफल उपचार तथा परामर्श,
4: शरीरको कुनै पनि भागमा मासु पलाएको अनावश्यक तथा मुसा कोटी आधुनिक मेसिनद्वारा हटाइन्छ,
2: शल्यक्रियाको डर बिना सुरक्षित उपचार र तुरुन्तै डिस्चार्ज,
4: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ।
5: बिरामी जाँच हुने मिति यही असोज 16 गते शुक्रबार।
6: दिव्य फार्मेसी कुराई 15 सड़क विभाग रोड, सम्पर्क फोन नम्बर 082-595-410, मोबाइल नम्बर 98-478-28913, 98-478-26163 र 98-095-12-871।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज।